न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बह।

0: हो गई बल्ले बल्ले।
1: Back to back songs with Ambala Sweets, celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets, now open in Sheffield.
2: Ambala, 100% vegetarian.
3: Ke alam mein nasha ho jab tere rukhsar dekhu. खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

Bon. Yeah. भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम पेस चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: and D. Can I get your votes in? 07 925 700 272. A, B, C, or D. Winning one next.
1: You'll be sport for choice at Al Murad, Britain's largest independent ceramic tiles importer and retailer. Visit our stunning showrooms across London and take advantage of our huge range of tiles at great prices, including clearance pallets with up to 80% off. Also, bathrooms, showers, taps, a range of vanity units and modern accessories. Open to trade and public with trade discounts. Delivery service available. Al Murad, with branches throughout London. Visit al-murad.co.uk.
2: Mira's Bar and Pure Vegetarian Restaurant. Mira's, for family and friends in that perfect ambiance, with mouthwatering Indo-Chinese, South Indian and clay oven a la carte dishes. Mira's Royal Thali will have you licking your fingers. Open 6 days from midday to 11 p.m. with live Bollywood night every Sunday from 6 to 10 p.m. Mira's Bar and Restaurant, 36 Queensbury Station Parade, Edgware. For bookings, visit mirarestaurant.com. Love all. Servo.
3: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास, सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
2: This is Sunrise, the UK's biggest. Asian. Mix.